14 का राम टीका 14 वर्ष रीति सिंह ठकुरी मृत अवस्था में फैला कार्यक्षेत्र में खटिग राष्ट्र सेवक कर्मचारी निर्धारित पीट करी फरार भैया एक अभियुक्त टुकड़ा हो करोड़ बचाओ अभियान मार्फत संकलित करी 5 लाख रूपया बिरामी को परिवार हस्तांतरण तेस्रो बागमती प्रदेश स्तरीय खेलकूद भोलिदी शुरू हो आजदी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: रेडियो धादिङ समय संकेत
4: अहिले बिहानको 8 बज्यो

दिल को चुमके हो रहा तारा ओय ओय ओय गोली भन्दा तिम्रो या जन्मारा दिल को चुमके हो रहा

0: को वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले साँझको 7 बज्यो
4: शिवम सिमेन्ट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै शिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा